0: मुर्गादी
1: मौसम कैसा है?
2: We have a meditation room complete with sound system.
3: अच्छा,
0: मछली,
2: सार्डिन? Yes, of course.